गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया। सच्चे पातशाह प्यारे गुरुदेव जी, इस पौड़ी दे विच जो विचार सानू समझा रहे हैं, सब तो पहला इस दे अर्थ आप जी की सेवा च मैं अर्ज करा। सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, क्योंकि साड़ी विचार ही सच नूं लभण दी चल रही है। सच की है? महाराज जी आखदे हन ओ सिर्फ सच्चे सतगुरु दी सेवा करके, सच्चे सतगुरु ते श्रद्धा विश्वास दे नाल उसदे उपदेश नूं मन के ते गुरु दे शब्द दी कमाई करके सच्चे सतगुरु नूं अपनी जिंद जान नालों भी प्यारा बना के जदों असीं सेवा करदे हां सच्चा सतगुर सेव तां जाके सच संभालिया, सच दी प्राप्ति हुंदी है, सच दी जो अचीवमेंट हुंदी है, सच जो रियलाइज्ड हुंदा है, सच जो है वो लभदा है, डिस्कवर हुंदा है कि सच की है। सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया। उस तो बाद महाराज जी आखते हैं अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया। सतगुरु दे अगे जो भी किसी ने कालना कीती है वो अंत दे विच सामने आके खलो जानी है, जिस तरह की किसी ने कीती है, जिस तरह की भी किसी ने कालना कीती है वो कहिंदे साडे अगे आ जानी है। दिलों कीती है तां भी, अगर लोकाचारी वजों कीती है तां भी, उपरले मनों कीती है तां भी, डूंगी प्रीत दे नाल आपा वार के कीती है तां भी। और बाबा फरीद जी ने एक गल बहुत कमाल दी आखी है, कहिंदे फरीदा दरवेसी गाखड़ी, दरवेश होना साधु संत होना रूहानी मार्ग पे चलना बहुत मुश्किल है, आम दुनिया चलती नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल है। फरीदा दरवेशी गाखड़ी चोपड़ी प्रीत, कहते जी साड़ी प्रीत है ये चोपड़ी चोपड़ी है, उपरों उपरों है, असल नहीं है। फरीदा दरवेशी गाखड़ी चोपड़ी प्रीत साढ़े सामने सिद्ध हुंदा है दुनिया दे विच अत्यंत तफा कि जिहड़ी साडी प्रीत हुंदी है, साडा प्यार हुंदा है, कितना चोपड़िया चोपड़िया हुंदा है। असलियत च अंदरों असीं कुछ होर सोचदे हां, दिखावदे असीं कुछ होर, पर महाराज जी आखदे हन सतगुरु दे अगे सामने जाके खलोआ, सतगुरु दे सामने प्रगट हो जाना है। अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया। सतगुरु दे अगे जो भी किसी ने कालना कीती है ओ जिस तरह की कीती है उस तरह की, कहिंदे अखीर दे विच जाके इंसान जदों शरीर छोड़ता है तो इस दे सामने आके खलो जाती है, उस दे अनुसार इसनूं फल मिलता है। पर जिन्हां ने सही तरह कालना कीती है महाराज जी कहिंदे हन पोहे ना सके जमकाल, उन्हां नूं जमकाल जो है ओ छो नहीं सकता। सच्चा रखवालिया, अकाल पुरख वाहिगुरु उन्हां दा रखवाला हुंदा है, क्योंकि गुरसाखी जोत जगाए। गुरु दी साखी दा मतलब हुंदा है सिख्या, गुरु दी महाराज जी दी सच्चे पातशाह जी दी सिख्या नूं मन मन के कमा कमा के, कहिंदे हन उन्हां ने अपने अंदर रूहानियत दा दीवा बाल लिया। गुरसाखी जोत जगाए, गुरु की सिख्या दे नाल अपने अंदर वाहिगुरु की जोत जगा ली है, वाहिगुरु की जोत प्रगट कर ली है, उन्हां दे अंदर ओ जोत ओ रोशनी ओ विजडम ओ इंटेलिजेंस
प्रगट हो गई है जड़ी इंटेलिजेंस ए सारी रचना नू बनांदी है। ओ अकल भाव रब दी अकल रब दी जोत ओ रबी रोशनी केंदे गुरु दी सिख्या नू मन के कमा के उस उते चल के उन्होंने अपने अंदर जोत जगा ली ते ओ दीवा

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं ना लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

हम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत कर दी, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। प्रीत साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उना दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नू देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नू इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वॉच देम। सिर्फ उन्हां नू देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नू देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है। अपने विचार अस्वारी कीजे, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्व।

है। वह वाचर कौन है? वह साड़ी आत्मा है, वह साड़ी बींग है। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना यह अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे। जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए किसी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी दी अंश, वो है वाहिगुरु जी दी जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर। जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नू देख रहा है, फिर असी उसनू पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसे ना किसे थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए हो, उदों फौरन वापस फिर वापस आओ। और वापस आके जदों ही कोई थॉट आवे, मन किते जान लगे, अपने मन नू आ पंक्ति बोल देनी, केड़ी

करुणालय है और तालय है, खल खंडन है, मह मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार पाप हरणे करुणा

अपने सतगुर के बलहारे, अपने सतगुर के बलहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, आगे सुख

लिहारी गुलाम ले देवानी सतवार जिन मानस ते देते की एक कतना लागी भार जिस सो चंदा गुवे सूर चढ़े हजार इत चन हम दिया गुरबन को रंदा।

0: सत्यता जो भुला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनवार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ मिया कूड़ बीबी का पोएगार
1: कूड़ कूड़े ने हो लगा।

0: परिवार पर रंग सो पे सुमचना सर्वपातन हो
1: नान पति जेर पे कुले सोना कोई महल्ला पैदा
0: लब

नानक मेरे शरीर का एक रथ कृतवा हो जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी सतगुर संतों का धर्म गिरथवाओ तेरे तेरा जित का जोर रथवाओ द्वापर रथ तपे का सत गिरथवा

सिख लोक सुनावे। कंत न पुछे वातुड़ी सुहाग गणावे। चूहा खड ना मावई लग छज वलावे। मंत न होए अठुहियां हथ सप्पी पावे। सरसन ने आगास नो फिर मथे आवे। तुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे। तुही

रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने। रतन मणि गल बंद रह क्यों कीम न जाने। करछी साओ न संभले भोजन रस खाने। डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने। नाप कठूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने। गुजर गोरस वेच के खलसूड़ी आने। बेमुख

भूते केरी दोस्ती नित सहसा दिए बेटे पूछन लगिया क्यों पार लंघिए भूते केरी दोस्ती नित सहसा दिए नदी किनारे रुखड़ा विसाहो न की मृतक नाल विहाई ऐ सुहाग न थीए विस हला हल बीज कै क्यों अम्यों लिए बेमुख सेती पिरहाड़ी

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई रंग मजिठो निकले अट लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यों चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़िया बने न विच समावे।

मुंह कालख भरिए वड़िए कज्जल कोठड़ी मुंह कालख भरिए कल्लर खेती बीजिए केहो काज न सरिए टूटी पिंगे पिंगिए पैटोए मरिए कन्ना फड़ मन तारुआ क्यों दुत्तर तरिए अगलाए मंदर सवें तिस नाल न फरिए

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरु शरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास द्रोही आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्याली है व्यो मुखों सुटे। सप्पे दूध प्याली है विहो मुखों सटे। पत्थर पानी रखी है मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे।

कपूर ना चखई, दुर्गंध सुखावे काओ कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे हाथी नीर न वालिए, सिर छार उड़ावे तुम्हें अमृत सिंजिए, कुड़त न जावे सिमल रुख सरेविए, फल हाथ न आवे निंदक नाम भी होने सतसंग ना पावे, मूर्ख सच न जाननी निंदक

कर दे परवासा। थल विच तपन पठिया क्यों लहे प्यासा। सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेबे जर साहेबे जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटान वाला इसम फाइल, ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन। सरार मीन्स बहुते भेद, जीवन दे अनेका ही भेदां नूं सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना टारे, रोजी ही राज विलोकत राजक, रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी, उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है, पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है, रोजी हिराज विलोकत राज कर, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी, तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है, जिन्हां विच लचक ना होवे। लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है, जड़ां गजा दे जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है, पर इक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनूं मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उहनां नूं भी तू अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए, धुप मट्टी

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्हीं ग्रह

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तरभव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी परत्र्य त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्हें भी हैरान करिए आज तो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है।